0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने शीतल की बर्थडे पर यहां आकर इस पार्टी की रौनक बढ़ाई।
1: पार्टी में रौनक तो जरूर है, लेकिन कुछ फीकी सी है। कहो तो मैं
0: इस खुशी के मौके पर मैं आप सब लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। किसी ने कहा है, जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर।
2: वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूब। लेकिन अंकल, जीवन बिना मीत के और शायरी बिना संगीत के किस काम? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शेर में संगीत भर दूं।
0: जरूर जरूर, क्यों नहीं।
2: थैंक यू सर, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके।